0: बंदा बंदा बंदा 1975
1: मूवी धर्म करम एंड दिस इज डन बाय लता मंगेशकर एंड द सॉन्ग इज नाच नाच नहीं आवत